0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनाओ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: me a extreme energy drink.
1: निकट मा दिदी बहिनी, निकट मा दिदी बहिनी।

0: सामाजिक सञ्जालजी छ्यानली जाँचीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन अधिकारिक प्रोफाइल मात्र फललना खैबै बिनी लिङ खुल्दिउ भन्दा उहिसु सु खन क्या खलो सुजी पिमिलो खन यामो बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिगो वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आक्षेप घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफै न पासपोर्ट फेरदिल परि म नै तोय तारी शङ्ख लैदी विषा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगी तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गरी क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्समा पनि उपलब्ध छ।
1: सामाजिक सञ्जालजी छ्यानले जाँची मरी बुझी मरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामो बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट ना URL चेक लना आक्षेवा घटना तल आफै लागि समय समय री आफै न पासपोर्ट फेरदिल परिम नुए तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: अनि तयो कागज केमा थियो वा
1: झिल्काई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वधी
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बाई अफिसर आएर ब्लक लै र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी सर चाहिँ तले लगपर्दी
0: सम लगपति न आफै न मोबाइल नम्बर फेरिदिया बधेर ब्लक पाए विषय आफै न ब्याङ्क दिए पनि जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी प्रज्ञा सचेत तल परिम
1: सतर्क तन ठगी शब्द क्या जोगिन
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी 95 थोप्लो